सुप्रभात श्रोताओ, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है शनिवार, शक संबद 1948, जस्ट महीने की 16 तारीख और अंग्रेजी वर्ष 2026 जून महीने की 6 तारीख। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के पे 5:58 हो चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं आज की पहली सभा।

0: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि

0: दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अभी जानते हैं आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम, 6:30 पर आप सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग, सुबह 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, ठीक 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन, बीट्स ऑफ हार्ट का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर, 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर, 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से, सुरों की रंगोली कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:40 पर, 9 आप सुनेंगे पुआर आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम 9:15 पर चोइलियंगोल नेवम और उसके साथियों की आवाज में। 9:25 पर आप सुनेंगे रंगखोल कार्यक्रम वन वुम थोई रंगखोल और उनके साथियों की आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:35 पर इवर वस्टिंग लकियांग और उनके साथियों की आवाज में। 9:45 पर आप सुनेंगे वेते कार्यक्रम रूठी एल नामपोई और उनके साथियों के आवाज।

आवाज में। 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

12:05 पर आप आनंद लेंगे विविध भारती कार्यक्रम का। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 1:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:05 पर आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिर से आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हिंदी में समाचार सुन पाएंगे शाम के 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 4:05 पर आनंद लेंगे रंगारंग कार्यक्रम विविध भारती का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अभी आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर-18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं पोएम ऑफ द डे दीपर्णा देव की आवाज में।
3: हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपर्णा देव एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हियर आई गो। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without the farmer's near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Thank you.
0: तो श्रोताओं, अब बातें करते हैं आज के दिन के बारे में।

आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है श्रोताओं, और असम वासियों के लिए तो आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई जी का जन्म तिथि है। हर साल 6 जून को ये दिन मनाया जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई आसाम के महान स्वतंत्रता सेनानी और राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 1890 में असम के नौगांव जिले में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम विद्येश्वर बरदलोई और माता का नाम प्रणेश्वरी बरदलोई था। उन्होंने असम की आधुनिक पहचान की नींव रखी थी। वे महात्मा गांधी के आदर्श और अहिंसावादी सिद्धांतों के पर चलते थे। गोपीनाथ बरदलोई ने लोगों के अधिकारों एवं कल्याण के लिए लगातार संघर्ष किया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत असम के पाकिस्तान में शामिल होने से बचने के लिए ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसे भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा है। उस समय के असम के राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने उन्हें जनहित के कार्य करने के लिए लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया है।

अब आगे बातें करते हैं आज के दिन यानी 6 जून की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक के साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। नेपोलियन के भाई जोसेफ को 1808 में आज ही के दिन स्पेन का राजा बनाया गया था। अमेरिका के ईस्ट केविलैंड के महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1916 में दिया गया। सन 1918 को प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान व्लेयुउट के युद्ध के अमेरिका को पहली जीत मिली। इजराइल की सेना ने गाजा पर 1978 में कब्जा किया। कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार ने 2008 में हासिल किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जापान के लैप किबो ने कार्य करना 2008 में शुरू किया था आज के दिन।

फिनलैंड ने 1919 में बोल्शेविक के खिलाफ युद्ध को घोषणा की। भारत की पहली जोड़ी लियरलैंड पेस तथा महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम 1969 में किया। बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड में 1969 में बिश्केक नामक आर्थिक सहयोगी समूह का संगठन किया।

आइए आप जानते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आज के दिन यानी 6 जून को जन्म लिया है। भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरुवचन सिंह रंधावा का जन्म 1940 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का जन्म 1955 में हुआ था आज ही के दिन। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री तथा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरविंदी केजरीवाल का जन्म 1958 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामान्यूट का जन्म 1936 में हुआ था आज ही के दिन। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म 1919 में हुआ था। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णे का जन्म 1901 में हुआ था। प्रसिद्ध शायर शोक बहराइची का जन्म 1884 में हुआ था आज ही के दिन। हिंदी भाषा के साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 में हुआ था आज ही के दिन। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी होम एओ का जन्म 1819 में हुआ था। ब्रिटेन के रसायन व भौतिक शास्त्री जोसेफ प्रिस्ली का जन्म फील्ड नामक नगर में 1733 में हुआ था आज के दिन।

आप जानते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज के दिन यानी 6 जून को हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता

कैप्टन अवगेशा प्राप्त का जन्म निधन 1959 में हुआ था। कर्नाटक के 8वें प्रधानमंत्री डी देवराज का निधन 1982 में हुआ था। दमदमी टकसाल के प्रमुख खलिस्तान आंदोलन के नेता जनरल सिंह विंदारवाला का निधन 1948 में हुआ था। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रोगन का निधन 2004 में हुआ था।

आपके गीत। दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही

ये रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

श्रोताओ, आइए आप आनंद लेते हैं कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स का। इस कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे कुछ प्यार भरी मोहब्बत से जुड़ी बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो दिलों को बिना किसी शर्त के हमेशा के लिए बांध देता है।

श्रोताओं, मोहब्बत सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जिंदगी का वो जादुई सफर है जिसमें हर खुशी दुगनी हो जाती है और हर गम आधा हो जाता है।

श्रोताओ, सच्ची महावत वो पवित्र बंधन है जो दो इंसानों की आत्मा को जोड़ता है। ये वो खूबसूरत एहसास है जो शब्दों के मोहताज नहीं होते।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते

0: वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गाँव गाँव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद 9 शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

0: मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर

0: और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कुछ देशभक्ति गीतों का। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं कार्यक्रम सिरों की रंगोली, जावेद अली के कुछ चुनिंदा कनेक्शन।

आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन रहे थे पुआर आंचलिक बातोड़ी। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा लोकगीत चोइलियंगोल लेबुम और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे खेलमा लोकगीत चोइलियांगुल नेइबम और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं रंगखोल कार्यक्रम। रंगखोल कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे रंगखोल लोकगीत वनवुम थोई रंगखोल और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रंगखोल लोकगीत वामबुम थोई रंगखोल और उनके साथियों के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत इबर बस्तिंग लकियांग और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओ, आप आनंद ले रहे थे जयंतिया भक्ति गीत का इबर बोस्टिंग लकियांग और उनके साथियों के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेते कार्यक्रम के तहत बेते आधुनिक गीत रूठी एल लंपोई और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही स्थानीय भाषाओं के गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अब आनंद ले विविध भारती के कार्यक्रम का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है, और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है, तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है, कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा, और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो

जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था। बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई। और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता। सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा। क्या करूँ? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था। कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी? अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा। आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ, बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है। पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना, मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना, अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो।

सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकार

खैर मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा। भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो

उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश हैं ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी, ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफ़र में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफ़ी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी? बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहाँ कहाँ से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल। आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं, मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की, सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्य राम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था। दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज़ में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओ रे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, रे मन सुर में गा ओ रे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है, रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं।

सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी, उदासी, आशा, निराशा, चैतन्य, वैराग्य, अभिमान, प्यार, स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से, गीतकारों के माध्यम से। क्या बात है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेघा रे मेघा रे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आए। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है को व्यक्ति के रूप में, अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं, रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

अभी अपना साथ न छूटे प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब बढ़ते हैं समाचार की ओर और सुनते हैं मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में

0: महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
5: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं समाचारों के तहत पहले आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब मनोरंजन को जारी रखते हुए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
7: कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं SN त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

राम रस प्यालियां, श्याम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहां।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।
2: दे

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।

0: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज़ सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो।
2: नहीं।
1: गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साए में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्ते फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपा भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म आली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है योर मैजेस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
3: जी योर मैजेस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह।

0: आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक। तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
0: जी जी हाँ, जान पनाह, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
0: ओह, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं। हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहता है।
1: ठीक है अमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
0: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा। बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
0: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते। हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
1: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
0: ओ जय पाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
0: ओ, ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हाँ जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हाँ आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
2: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी आदिकद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया।

0: कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
0: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
0: बेशक आलम पना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से,
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम पना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलम पना को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलम पना।
1: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदसात।
0: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है।
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं।

0: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
1: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
0: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
1: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं, और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड।

और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंध सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये दौरा

0: इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। पार्टनरशिप दैट वी हैव विद
1: नेपाल। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 69 ओवर में 3 विकेट पर 308 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाले T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। दोस्तों चलिए एक बार फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: का प्यार बांटने का सलीका है,
4: शुक्रिया।
3: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी।

0: बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
1: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो
0: जी,
1: जाए।
0: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
1: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती
0: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
1: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
0: अच्छा,
1: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ
0: हाँ,
1: रेडियो हुआ करता था,
0: उस जमाने में तो था
1: ना था नहीं।
0: नहीं।
1: और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी इतनी चीज़ें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
0: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए हैं, अभी टेरेस गए, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
1: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो बोला कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
0: अरे इतनी चीजें याद है आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
1: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
0: बोनियम का, ओके,
1: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
0: सौतन।
1: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है। हाँ। अजीब दास मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लव्ज जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
0: याद भी हो जाते थे,
1: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था तो, और रिजल्ट भी लेकर आता था। पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से फिर मेरे और बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली। क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
0: ओह।
1: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, मैं, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक, मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग, मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी

0: बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने मतलब की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट,
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
0: हाँ।
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता, तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: पे लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना, नहीं है करना आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रहा करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं जिंदगी

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मैंने टिकने क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है। लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहां जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
0: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने के, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती
1: है
0: वो वाला डांस सेक्शन,
1: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
0: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
1: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए, मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। मैं नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं ये तुमको आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th century, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
0: कहानी है
1: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
0: बताइए।
1: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
0: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
1: स्कूल्स
0: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
1: एब्सोल्युटली,
0: वो तो आप जानते नहीं थे,
1: एब्सोल्युटली।
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
1: ज़रूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज़ आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया। फिर भुज गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3rd दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और बड़े कलाकार बड़ी फिल्म थी।
1: हाँ,
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूँगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जुड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जुड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नज़र में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

नमस्कार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:16 हुए हैं, यानी समय हो चला है आज की दूसरी सभा आरंभ करने की। मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की दूसरी सभा। दोस्तों, पहले आप सबको आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

6:05 से आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। सबसे पहले आप आनंद लेंगे मार भक्ति गीतों का, गायक कलाकार सुंकिम वाइफे टारगाव और उनके साथियों की आवाजों में। 6:25 का समय रहेगा जेमी कार्यक्रम का, जिसमें आप आज सुन पाएंगे कुछ जेमी आधुनिक गीत हेग्यू बामले जेमी और उनके साथियों से। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किया जाएगा आंचलिक बातोरी। समय रहेगा 6:45 का। 7:00 स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे डिमासा कार्यक्रम का, जिसमें आप आज सुनेंगे कुछ डिमासा लोकगीत संपेर बोडो के आवाज में। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज, जिसका थीम रहेगा युवा शक्ति। 7:45 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुकी कार्यक्रम, जिसमें आप आज आनंद लेंगे कुछ कुकी पारंपरिक गीतों का लुतमांग चोंगलोय और उनके साथियों से। 8:00 आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे ज्योति तेल रानचाल। 8:30 का समय रहेगा टीचर्स कार्यक्रम का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा समाचार संध्या, समय रहेगा 8:45 का। 9:00 आप सुन पाएंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग, जिसे प्रस्तुत करेंगी संयुक्ता दत्ता। 9:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत मार भक्ति गीत। गायक कलाकार थे सुंकिम वाइफे दरगाओ और उनके साथी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत अभी आप सुनेंगे कुछ जेमी आधुनिक गीत गायक कलाकार हेग्यू बामले जेमी और उनके साथियों के आवाज़ों में।

दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत जेमी आधुनिक गीत का कलाकार थे हेग्यू बामले जेमी और उनके साथी। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है।

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आंचलिक बातोरी FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत अभी आप सुनेंगे डिमासा लोकगीत, गायक कलाकार संपेर बोडो के आवाज़ में। तत्पश्चात 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज, जिसका थीम रहेगा युवा शक्ति।

哎哈空干一汤锅中哦哈空干一汤锅里三个里叶子空里汤锅里三个里哎给伦敦

공간이

ทำเพื่อจารีย์

0: मज़ा रेंगो।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाश स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत डिमासा लोकगीत गायक कलाकार संपेर बोडो की आवाज़ में FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज जिसका थीम है युवा शक्ति।

0: जिसका आप सभी ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैव उर्वरक, जैसे कि हम अपने पूसा संस्थान में भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जैव उर्वरक बनाते हैं, वहाँ एक सेल काउंटर भी है जहाँ पे ये सब उपलब्ध है। तो ये जितने भी हमारी रासायनिक खाद है उसको हम कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा परसेंटेज इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर हम ये जैविक खादें इस्तेमाल करें तो। और अगर खरीफ फसलों की बात करें, ये समय है खरीफ फसलों की बिजाई चल रही है, तो इन खरीफ फसलों में जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द आदि में बुआई से 2-3 सप्ताह पहले अगर उस खेत में आप 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छे से ये खाद मिला दें तो इससे फसल की जो प्रारंभिक वृद्धि होगी वही इतनी बेहतर होने लगती है और वो पोषक तत्व जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से हम रासायनिक अपनी खादें डालते हैं, वो बहुत आसानी से हम इनको इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं।
1: जैसे कि जैव उर्वरकों की हम बात करें तो क्या है ये जैव उर्वरक और जैविक खाद की तरह इनका इस्तेमाल होता है?
0: हाँ, जैव उर्वरक भी इसी तरह से है जैसे कि हमारे पास जैव उर्वरक अब हमने स्पेसिफिक बना दिया। जैसे गोबर खाद है उसमें तो एक बहुत सारे तरह के आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे जो वो काम करेंगे, चाहे संतुलित पोषक तत्व देने हैं, कुछ भी देना है उसका काम करेंगे। लेकिन जैव उर्वरक स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास राइजोबियम का कल्चर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अगर नाइट्रोजन चाहिए पौधे में तो वो राइजोबियम डाल के आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कल्चर होते हैं, राइजोबियम का है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। इसी तरह से फॉस्फेट का सोल्युबलाइजर उपलब्ध है जो फॉस्फेट को घुलनशील बनाता है और वो पौधा आराम से ले लेता है। इसी तरीके से पोटाश के भी घुलनशील जीवाणुओं का एक जैव उर्वरक बनाया गया है। और इन्हीं के साथ साथ माइकोराइजा, शायद हमारे किसान भाइयों ने बहुत नाम सुना होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी डिमांड कह लीजिए और उसकी जो जागरूकता है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि माइकोराइजा एक ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जो एक किसान को आंखों देखी वो फर्क दिखाता है 30 से 35 दिन के अंदर, क्योंकि ये जड़ों में विकास करता है, जड़ों में अपने आप को स्थापित करता है। उसके बाद वो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, वो नींव इतनी मजबूत हो जाती है उस फसल की या उस पौधे की जिसमें वो माइकोराइजा डलता है, कि उसके बाद उसमें वो न्यूट्रिशन जो है, जितना भी पोषक तत्व है जो जमीन में है, जो पौधा वैसे नहीं ले पा रहा था, लेकिन माइकोराइजा डालने के बाद और वो अच्छी जड़ स्थापित होने की वजह से वो बहुत अच्छे से उन पोषक तत्वों को और पानी को भी बहुत आसानी से वो पौधा अपने आप अंदर ले लेता है और उसके पूरे उसमें वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल, तो जो हमारे किसान भाई मान लीजिए रासायनिक खादों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको कितना लाभ होता है, लागत में कितनी कमी आती है?
0: अगर देखिए हमारे पास जितने भी जैव उर्वरक हैं वो आपको 25 से लेकर 30% तक भी वो फायदा देते हैं। कि अगर फॉस्फोरस की बात करें, अगर आप माइकोराइजा डालेंगे तो आप 15 से 25% तक फॉस्फोरस जो डीएपी के थ्रू डाल रहे थे उसको कम कर सकते हो। तो इसी तरह से लागत नाइट्रोजन के केस में भी है कि वो भी यूरिया आप कम कर सकते हो इसी तरह से 25 से 30% अगर आप ये राइजोबियम और ये सब इस्तेमाल करेंगे, कल्चर इस्तेमाल करेंगे, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। इसी तरीके से पोटाश और जिंक सोल्युबलाइजर भी है। और सबसे बड़ी बात कि रासायनिक खाद जो है वो बहुत महंगी है और ये बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ना तो प्रदूषण होगा इसकी वजह से, ना पर्यावरण में कोई और दिक्कत आएगी, ना जल का प्रदूषण होगा, ना वायु का प्रदूषण होगा। और कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव जब हम दोबारा इनको डालेंगे तो ये और सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि करेंगे और उस जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाएंगे।
1: आपने बात की थी गोबर की खाद की, तो पशुपालन हमारे किसान भाई करते ही करते हैं खेती के साथ साथ में, तो जो किसान भाई जैविक खाद के रूप में गोबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैविक खाद कितने साल में बन जाता है? किसान भाई अपना इकट्ठा करते रहते हैं गोबर।
0: जैविक खाद सालों में नहीं बनता, इसके लिए दिनों की ही जरूरत होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की बात करेंगे तो ये गोबर की खाद जो है उसका इस्तेमाल करके और इसमें जो अवशेष हैं, जैसे पौधे लगे होते हैं उसकी पत्तियां गिरती हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल करके या जो हमारे किचन में जो वेस्ट आता है उन सबको इकट्ठा करके अगर हम ये खाद बनाना चाहें तो 45 से 60 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी खादें तैयार की जा सकती हैं। और इनका थोड़ा सा तरीका अलग अलग है, लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करें जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं, बहुत सिंपल तरीके हैं। कोई भी किसान भाई या जो युवा हैं वो कोई भी इसको पढ़ के आसानी से अपने घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता होती है?
0: यंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक केंचुआ होता है जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है जिसे एसिना फाइटेडा के नाम से जाना जाता है, और केचुआ खाद बनाने के लिए जो ये केचुआ इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर वर्मी कंपोस्ट किसी को बनाना है घर पे, तो वो सबसे पहले क्या करे कि छायादार स्थान पर ईंटों या सीमेंट की सहायता से एक बेड बनाए पहले, और उस बेड के अंदर सूखी पत्तियां, फसल अवशेष या घरों में जो हमारी रसोई का अवशेष है और आंशिक रूप से सड़ा हुआ जो गोबर है, उनकी परतें बनाई जाती हैं, परत उसको भरा जाता है, और नमी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी किया जाता है, और फिर उसमें केचुओं को छोड़ दिया जाता है, और फिर उस बेड को हम बोरी से या किसी घास के उससे परत से ढक देते हैं, और उसके बाद जब बीच बीच में उसको ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं ताकि वो जो वायु है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से चली जाए और वो जो बन रहा है वो अच्छे से बनता रहे, और 45 से 60 दिनों के अंतर वो वर्मी कंपोस्ट की तरह तैयार होता है। इस तैयार खाद को छानकर अलग किया जाता है और केचुओं को पुनः दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगली खाद बनाने के लिए। तो ये भूरे रंग की दानेदार खाद की तरह तैयार होती है जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारी फसलों के लिए और पौधों के लिए।
1: तो जो भी हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो खासकर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो इसमें एक जीवित चीज है केंचुआ। अगर वो केंचुआ बहुत ही ज्यादा गर्मी अगर वहां हो जाए तो भी वो मर जाते हैं, ज्यादा पानी भर जाए तो भी मर जाते हैं। तो सबसे पहले गर्मी और पानी का आपको एक संतुलन रखना होगा, और हमेशा ये इकाई हमेशा एक छायादार जगह पे बनानी चाहिए आपको, वहां पे ही रखना चाहिए। बेड में 60-70% नमी बनाए रखें, ऐसा ना हो कि पानी ऊपर तक भर जाए या ऐसा जमा होने लगे। और उसके बाद ताजा गोबर, प्लास्टिक, कांच, धातु या रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें गोबर भी जो है थोड़ा सा सड़ा हुआ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं, तो ये प्लास्टिक और ये कांच वगैरह उसमें ना हो। और बहुत अत्यधिक गर्मी, धूप और अन्य कीटनाशक जो है वो ना इस पे छिड़के जाएं, क्योंकि केंचुओं को बचाना बहुत आवश्यक होता है। और समय समय पर नमी और तापमान, जो कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनकी आपको जांच करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो वर्मी कंपोस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारे खासकर युवा साथी हैं,

0: और युवा किसान भी हैं, वो चाहते हैं तो अपने खेतों के लिए वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें, अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात आती है कि निर्माण कर रही हैं तो क्यों ना व्यापारिक स्तर पर निर्माण
1: जी
0: किया जाए,
1: जी
0: ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी
1: हाँ
0: इसका उपयोग लाया जा सके। तो किस तरह से आप रोजगार की दृष्टि से हमारे युवा साथियों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: जी वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की अगर दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है, क्योंकि एक लाभकारी ग्रामीण उद्यम है। किसान कम लागत में उपलब्ध जो गोबर होता है, कृषि अवशिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल हर चीज को, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल आपके पास सब कुछ है, आपके पास गोबर खाद है, आपके पास कृषि के अपशिष्ट हैं, उनका उपयोग करके सिर्फ आपको केंचुआ जरूर एक बार खरीदना होगा, वो भी आप एक बार खाद बनने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान जैविक खेती में वैसे भी प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, वर्मी कंपोस्ट की कहें या और जैव उर्वरकों की मांग कहें, ये बहुत बढ़ रही है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में चल रही है। तो इसके साथ साथ वर्मी वॉश और केंचुओं की बिक्री से भी अधिक आय की जा सकती है, कि जैसे आपके पास केंचुए हैं, वो भी अपने आप को हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेंगे, तो उनको भी बेचा जा सकता है जो वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। तो इस तरह यह रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक उपाय हो सकता है आय कमाने का।
0: बिल्कुल, क्षेत्र कोई भी हो, कुछ भी हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, बात हम वर्मी कंपोस्ट निर्माण की कर रहे हैं, तो कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी इसकी चलती है ताकि वो सीख करके अपना जो खुद का प्लांट लगा सकें और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सकें।
1: जी हाँ, कंपोस्ट की ट्रेनिंग, फार्म यार्ड मैन्योर की ट्रेनिंग और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग है, ये आप आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे भी देखेंगे, वो बहुत आसानी से आपको कहीं ना कहीं वो विकल्प मिल जाएंगे। नई दिल्ली में भी ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो हमारे किसान भाई आकर देख भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाता है। उनको वो पिट्स दिखाई जाएंगी, किस तरह से बेड तैयार होते हैं, किस तरह से वो जब खाद बन जाती है तो उसकी क्वालिटी को कैसे टेस्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा कि देख के कैसी वो खाद आपकी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो वो सारे मापदंड उनको वो सब सिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है।
0: डॉक्टर सीमा संगवान जी, इन दिनों भारत सरकार का खेती बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात की जा रही है, तो इसमें जैविक खाद और बर्मी कंपोस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है?
1: जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो हमारा अभियान है, हमारे मिनिस्टर साहब ने चलाया है, ये इसी पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से जो हमारी रासायनिक खादें हैं उनको छोड़कर हमें ये जो जितनी भी जैविक खादें हैं, जैसे कि कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, और अगर हम जैव उर्वरक की बात करें तो जैसे कि पूसा माइकोराइजा, पूसा डीकम्पोजर, पूसा संपूर्ण, पूसा बायोपोटाश, बायोफॉस, बायोजिंक, एजोटोबैक्टर, हम इस अभियान के जरिए ये सब हमारे किसान भाइयों को अलग अलग गाँव में जाकर हर रोज यही अलग अलग टीम्स में हम जाते हैं और यही अवेयरनेस, हम जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से रासायनिक खादों के उपयोग की बजाय वो इनका इस्तेमाल शुरू करें और फिर देखें कि किस तरह से बीमारियां भी कम होंगी और प्रदूषण भी कम होगा। सबसे पहले उसमें अगर मेन बात करें तो सबसे पहले हम सॉयल टेस्टिंग की बात उनको समझाते हैं कि जिस तरह से एक शरीर को चेक किया जाता है कि उसमें किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से उसको वो पोषक तत्व दिया जाए, इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को भी हम इस अभियान के जरिए यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी मृदा का चेकअप कराएं, समझें कि उसमें किस चीज की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें पहले से पूर्ति है, लेकिन हम ऊपर से बिना जानकारी के उसको डाले जा रहे हैं, जो कि जमीन में नीचे जा रहा है या फिर वो पानी में घुल के हमारी नदियों में मिक्स हो रहा है, जो कि हमारी पशु भी पीते हैं और हम लोग भी शायद पीते हैं, तो वो रसायन जो है वो हमारे शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आता है। तो उसकी बजाय सबसे पहले हमें सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, अपने मृदा का टेस्ट कराओ, उसमें ये समझो कि किस चीज की पूर्ति करनी है और उसके हिसाब से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करो, उनका चयन करो और उनको डालो, क्योंकि जितना जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जो पोषक तत्व है और मृदा की शक्ति है वो उतनी ही बढ़ती रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर सीमा सांगवान जी, हमारे किसान भाई जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके खेत की मृदा स्वस्थ रहे और स्वस्थ अच्छा उत्पादन मिल सके, ताकि

दिखने के चक्कर में डिप्रेशन और इंसोम्निया का शिकार हो रहे हैं। 27 साल के आयान को ही देख लीजिए, वो मुंबई की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। लाखों का पैकेज, शानदार अपार्टमेंट, चमचमाती कार, सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। पिछले 2 सालों से वो बिना नींद की गोली के सो ही नहीं पाता था। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके दिमाग में ईमेल, मीटिंग्स और टारगेट्स मशीन की तरह दौड़ने लगते। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी, सिर्फ 7 दिनों में पाए जीवन का गहरा संतुलन और मानसिक शांति। वीडियो में विदेशी विशेषज्ञ, हरे भरे लॉन और सफेद वस्त्र पहने प्रसन्न लोग थे। 2 लाख रुपए फीस देकर आयन ने तुरंत बुकिंग कर ली। उसने सोचा, अगर शांति खरीदनी पड़ती है तो खरीद ही लेता हूं। पहले दिन सब कुछ सपने जैसा लगा, संगमरमर की इमारतें, धीमा संगीत और मुस्कुराते चेहरे। सुबह का योग ध्यान अच्छा था, लेकिन उसके बाद लग्जरी साउंड हीलिंग और कॉस्मिक एनर्जी एनलाइटनमेंट जैसे भारी भरकम सत्र शुरू हो गए। हर चीज अब ब्रांडेड हो गई है क्या, उसने सोचा। दूसरे दिन एक घटना ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी। रिसेप्शन पर खड़ी नेहा के चेहरे पर थकान थी, तभी दूसरी कर्मचारी ने उसके कान में फुसफुसाया, नेहा मुस्कुराओ, सर सीसीटीवी में देख रहे हैं। नेहा ने तुरंत चेहरे पर नकली मुस्कान चिपका ली। आयान ने ये देखा तो खटक गया, ये कैसी जगह है जहां मुस्कुराना भी नियमों का हिस्सा है। दिन बीतने लगे। तीसरी रात लगभग 2 बजे अचानक आयान की आंख खुली। खिड़की से बाहर दूर बगीचे में एक बुजुर्ग व्यक्ति टॉर्च लेकर टहल रहे थे। अगली सुबह कर्मचारियों से पूछने पर सब चुप हो गए और बनावटी मुस्कान से कहा, सर शायद आपने सपना देखा होगा। आयान का मन उछट गया, उसने कार निकाली और वापस निकल पड़ा। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद उसे खेत के बीच मिट्टी का साधारण घर दिखलाई दिया। क्यों? क्योंकि कार बंद हो चुकी थी, टायर फट चुका था। रहने वाले एक बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी खराब हो गई है क्या बेटा, रात यहीं रुक जाओ, सुबह मैकेनिक बुला लेंगे। मजबूरी में आयान रुक गया। शाम को बुजुर्ग ने कहा, बेटा जरा कुएं से पानी खींच दोगे, हाथ में दर्द है। आयान ने जीवन में कभी कुएं से पानी नहीं निकाला था। उसने पूरी ताकत लगाई और रस्सी खींची और क्या हुआ, ऑफिस में महीनों के मेहनत के बाद भी जो सफलता अधूरी लगती है, वहां कुछ ही मिनटों में उसका परिणाम ठंडे साफ पानी के रूप में सामने था। वो अनुभूति सुखद थी। तभी उसने महसूस किया, ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर गांवों की घाटियां, उसके भीतर की तनाव की गांठ ढीली पड़ने लगी। रात को उसके लिए नीम के पेड़ के नीचे खटिया लगाई गई। आयान को लगा था बिना नींद की गोली के उसे कभी नींद नहीं आएगी, पर सुबह चिड़ियों की आवाज से ही आंख खुली। ऐसी नींद आई जो उस वेलनेस रिट्रीट में नहीं आई थी। आयान ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या आप रिट्रीट में थे? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ बेटा, कभी कभी वहां बागवानी देखने चला जाता हूं। तो क्या वहां लोगों को शांति मिलती है? बुजुर्ग ने कहा, योग ध्यान बहुत काम की चीजें हैं, लेकिन शांति किसी पैकेज की मोहताज नहीं। वो मनुष्य का मन भी खेत जैसा है, उसे खुली हवा, थोड़ा श्रम, मिट्टी की खुशबू और ऐसे काम चाहिए जिनका फल आंखों के सामने हो। अगले दिन कार ठीक हो गई और रास्ते में उसका मन भी ठीक होने लगा था। उसे समझ आ गया कि सुकून हमेशा महंगी जगहों पर नहीं मिलता, कभी कभी वो एक टूटे हुए टायर, एक अनजान खेत, कुएं के पानी और नीम के पेड़ के नीचे बिछी एक साधारण खटिया के रूप में आपका इंतजार कर रहा होता है। आयान की कहानी। अब एक और, बुजुर्गों का अकेलापन और यादों का मरहम। सुकून तो सादगी में ही है। चलिए बात करते हैं उनकी, जिन्होंने हमें इन जड़ों से जोड़ कर रखा है, हमारे घर के बुजुर्ग। जब बच्चे बड़े होकर उड़ जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं ये

अगले दिन। पीछे रह जाते हैं ये बुजुर्ग जिन्हें अकेलापन धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगता है। सुनिए 75 साल के दीवान जी की कहानी। दीवान जी अपने बेटे बहू और पोते के साथ शहर के आधुनिक अपार्टमेंट में रहते थे। घर में हर चीज व्यवस्थित थी। बेटा बहू दोनों काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे दीवान जी को लगने लगा था कि इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो वृद्धाश्रम चले जाएंगे। वे अपना कपड़ा समेट ही रहे थे, उस समय पोते की घबराई हुई आवाज आई, पापा मेरे सारे पौधे मर रहे हैं। दीवान जी बाहर आए, पोते के एक प्रोजेक्ट की वजह से उसने अपनी छत पर महंगे पौधे, ऑटोमेटिक पानी देने वाली मशीन, नमी मापने वाले सेंसर सब कुछ लगा रखा था, फिर भी पौधे मर रहे थे। दीवान जी कुछ देर चुपचाप पौधों को देखते रहे, कुछ सूंघा, उंगलियों से मिट्टी को छुआ, फिर कहने लगे, समस्या पानी की नहीं है। सबने आश्चर्य होकर उनकी ओर देखा। तो फिर दीवान जी मुस्कुराए, ये पौधे दम घुटने से मर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया।

उन्होंने एक गमला उठाया, उसके नीचे के छेद मिट्टी और काई से बंद हो चुका था। पानी बाहर निकल रही थी और जड़ों के आसपास सड़न शुरू हो गई थी। पौधों को सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा, जड़ों को सांस भी चाहिए। सब आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। कुछ सप्ताह बाद स्कूल में पर्यावरण प्रदर्शनी लगी। आर्यन का प्रोजेक्ट था पेड़ों की जड़ों से मैंने क्या सीखा। सबको लगा वो खाद, पानी और बागवानी की बातें करेगा, लेकिन मंच पर जाकर उसने जो कहा उससे पूरा हॉल शांत हो गया। उसने कहा, मुझे लगा था कि पौधे मशीनों से जिंदा रहे, लेकिन दादाजी ने बताया जड़ों को सांस चाहिए। फिर मुझे समझ आया कि वह बात इंसानों पर भी लागू होती है। घर में हम सब अपने

दोस्तों आप सोच रहे होंगे आखिर स्कूल में क्या हुआ। जी हाँ, पोते ने कहा, घर में हम सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमने अपने परिवार के जड़ों को भूलना शुरू कर दिया है। फिर उसने मंच से अपने दादाजी की ओर इशारा किया। मेरे दादाजी हमारे परिवार की जड़ हैं। अगर जड़ें दिखाई न दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे जरूरी नहीं है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दीवान जी की आंखें भर आई। उस शाम वे घर लौटे। कमरे में रखा हुआ वो बैग अभी भी वहीं था। उन्होंने उसे खोला, कपड़े निकाले और बैग वापस अलमारी में रख दिया। फिर बालकनी में जाकर उन पौधों को देखने लगे जिन पर नई कोंपले निकल रही थी। दीवान जी ने वृद्धाश्रम जाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था पेड़ की

0: ताकत उसकी नई पत्तियों में नहीं, उसकी पुरानी जड़ों में छिपी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज 6 जून के इस विशेष शो क्रिएटिव रूट्स का यही सार है, तरक्की की ऊंचाइयों को जरूर छुओ, आसमान में जितना उड़ना है उड़ो, लेकिन अपनी जड़ें जमीन से जोड़ कर रखो। जब भी मन अशांत हो, थोड़ा ठहरो, प्रकृति को महसूस करो और अपने बड़ों के पास बैठो। मानसिक सुकून वहीं इंतजार कर रहा होता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ अनन्या आपसे विदा लेती हूँ। ये था माई इनोवेशन, माई क्रिएटिविटी और क्रिएटिव रूट्स, माटी, मन और मॉडर्निटी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अपनी जड़ों से। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना अनन्या की आवाज़ में माय इनोवेशन माय क्रिएटिविटी। ये कार्यक्रम समाप्त होता है। कृपया हमारे साथ बने रहे अगले कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट बैंड के लिए।

0: Good evening, listeners. You are tuned to the Northeastern Service of Akashwani, broadcasting from Shillong on FM 100.1 MHz and also over AIR Northeast DTH.
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्पेशल बाइलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज, जिसका थीम था युवा शक्ति। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का।

0: दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत अभी आप सुनेंगे कुकी पारंपरिक गीत का कलाकार लुतमांग चोंगलॉय और उनके साथियों से।
1: पाला नंग कपा ए चुंग मांग पा नंग कपा ए।

दोस्तों आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत कुकी पारंपरिक गीत गायक कलाकार लुतमांग चोंगलोय और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगे जुदित एल रानचाल और आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है मिस्टर पीटर सुमर। तो आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी हाफलोंग के कृषि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेलेडी।
1: और मैं हूँ जिदित। मेरी तरफ से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज के किसान वाणी की इस कड़ी में हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं ऐसी खेती प्रणाली जिसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग पौधे या फसलों की खेती की जाती है, जिसे हम मिक्स्ड प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस विषय के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे अतिथि उपस्थित हैं। तो आज हम इन जानकारियों को आपके साथ बांटने जा रहे हैं हमारे अतिथि के साथ, जो है पीटर सुमेर, जो कई सालों से मिक्स प्लांटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के अतिथि का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्ते।
0: तो सर, सबसे

0: उनमें हम बहुत कुछ पौधा लगाया।
1: जी, तो आपने क्या क्या लगाया है?
0: सबसे पहले तो तामुल लगाया,
1: हाँ
0: उसके बाद में ऑरेंज दिया है, मौसम्बी भी दिया है, और उसका साथ में कुछ जिंजर भी लगाया, हल्दी लगाया, और कुछ पान भी दिया है मैंने। उसका साथ साथ नारियल भी लगाया,
1: अच्छा।
0: नारियल भी सर्वाइव अच्छे किया अभी तक। और उसके साथ में बनाना G9 भी लगाया, वो तो फल नहीं दिया अभी तक, हम देख रहे हैं उसको। उसके साथ साथ मैंने चंदन दिया, रेड चंदन भी दिया, व्हाइट चंदन दिया। उसका साथ साथ अब और भी बहुत कुछ पौधा है, फ्रूट्स में आगर भी मैंने दिया,
1: अच्छा।
0: आगर भी लगाया। उसके बाद में लेमन है, लेमन
1: अच्छा।
0: तो बहुत अच्छा होता है हम लोग यहाँ, फल भी मिला है मैंने। उसके साथ साथ आपका फ्रूट्स में हो गया, मैंगो एक दो पीस लगाया। इसके साथ इस साल हम एप्पल लगाया,
1: ये तो
0: एप्पल एप्पल हाँ, जो गर्मी के जगह में होता बोला,
1: हाँ
0: हार्मोन हार्मोन 99 बोल के, वो ट्राई कर रहा है कि
1: अच्छा।
0: हमारा मिट्टी में कैसा होगा उसका फ्रूट। अगर हमारे यहाँ अच्छा हुआ तो और लोगों भी लगाएगा उसको लेके, तो हमारा यहाँ का बेनिफिट होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट का। बाहर
1: जी
0: से लेने के बाद हम लोकल अवेलेबल कर सकते ना हम
1: जी
0: लोग ले
1: बिल्कुल।
0: सकते। इसके साथ में आपका गुआवा भी दिया है, गुआवा तो हमारे यहाँ में होता है लोकल वाला, और लेकिन हम बाहर से भी कुछ लेके दिया, वो क्या ब्लैक डायमंड बोलता है उस, उनको भी हम ट्राई किया। ऐसे में और भी बहुत कुछ मैंने लगाया, और जो पेड़ भी है मैंने पाल के रखा, वो पेड़ में हम पान दिया। उसका साथ साथ कुछ पेपर पेपर भी देंगे, ऐसे हमारा प्लान है। लेकिन हाँ, खाली लगाने से नहीं होता, उसको देखभाल बहुत करने पड़ता है,
1: जी
0: बहुत तकलीफ है।
1: ये
0: एटलीस्ट 3 बार तो कम से कम हमको वीडिंग करना है, साफ करना है, उसको इंसेक्ट को देखना है, बहुत कुछ है इसमें।
1: ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात बताई है कि सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं है, देखभाल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एंड में हमको तो प्रोडक्शन ही देखना है कि हमको इससे कितना मुनाफा मिल रहा है। तो आपने इतने सारे अलग अलग किस्म के पौधे लगाए हैं, तो ये जो पौधे जो आपने लगाया है, ये मतलब कितने बड़े ज़मीन में लगाया है, लगभग कितना बड़ा है?
0: लगभग 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा।
1: काफ़ी बड़ा जगह है। तो मतलब 12 बीघा को आप कैसे मॉनिटर करते हैं?
0: वो मेरा लोग है, साथ
1: अच्छा।
0: में वर्कर है, मेन एक लीडर है,
1: हाँ
0: तो उसको मैंने गाइड करता है। उसके साथ साथ और भी 3-4 लोग है, वो लोकली सब लोकल हमारा गांव का लोग है, उन लोग को हम ऐसे एम्प्लॉयमेंट उन लोग मिल रहा है हमसे, तो इसी तरह हम इनडायरेक्टली हम हेल्पिंग देम ऑल्सो ना।
1: तो सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको इतना सारा अलग अलग प्लांट्स, मतलब जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो इनको लगाने का आइडिया आपको कहाँ से आया?
0: आइडिया तो मेरा इसे मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था,
1: हाँ
0: 36 ईयर्स सर्विस किया,
1: अच्छा।
0: रिटायर्ड हो गया 2020 में, तो हम तो एनवायरनमेंट के साथ रहा, तो मैंने सोचा क्या करें, कुछ तो करने पड़ेगा, तो अपना हेल्थ को रखने के लिए, तो अपना माने क्या बोलेगा, अपने हेल्थ और अपना माइंड को सही रखने के लिए तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये
1: जी।
0: मेरा आइडिया था, और लाइफ इसमें था, इसलिए मैंने चुना वही, क्योंकि हम भीड़ भाड़ सिटीज हमको पसंद नहीं, गांव पसंद है, ऐसे कुछ करने का पसंद है, कैसे एनवायरनमेंट को हम बचा के रखेगा, वही है हमारा मकसद है।
1: आपका मकसद तो सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो ये दिमा हसाओ जिला जो है, हमेशा हरा भरा रहे। और मतलब सिटीज़ में जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको भी वो सिटी लाइफ तो पसंद नहीं है। हम वापस अपने रूट्स में ही वापस आना चाहते हैं। अगर हम बाहर भी चले जाते हैं तो वापस हमको अपनी ज़मीन ही पुकारती है वापस आने के लिए। तो ये पहाड़ी इलाका है, हरा भरा है, बहुत सुंदर है, यहाँ पे रहना अच्छा भी लगता है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप हमारे एनवायरनमेंट को भी पेड़ लगाकर इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में हमको अच्छा हवा मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस पे भी ध्यान दें कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो आपने पेड़ लगाया, प्रॉफिट के लिए लगाया, प्रॉफिट के लिए ही सही, पर पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एक ऑर्नामेंटल पेड़ हो, या फिर फल का पेड़ हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मल जो पेड़ होते हैं जो जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए भी।
2: जैसे आपने बताया कि आपने तो बहुत सारा पौधा लगाया है, तो उसको देखभाल करने के लिए आप क्या-क्या करते हैं?
0: वो मॉनिटर करने पड़ता, हम खुद भी करता जाके, खुद भी अपना टाइम देता, और
2: जी।
0: साथ में वर्कर है, उन लोग को आइडिया देता है, और लोकली जो गांव

0: लोग है वो तो जानता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है कैसा लगाना, कैसा साफ करना, कैसा उसको इंसेक्ट को मारना है। एक्चुअली इंसेक्ट होता है आपका ऑरेंज, क्योंकि आपका बोरर होता है ऑरेंज हो लेमन हो, उसमें बोरिंग का लगता है, उसको लोग बहुत ख्याल करता है। उसको हमको मेडिसिन से भी नहीं हो तो मेडिसिन रखता है, लेकिन उसको हमेशा ख्याल करने पड़ता है कि वो लगने के साथ साथ उसको कैसा दवा दे के उसको ख़त्म करेगा, नहीं तो स्लोली वो मर जाता है
1: मर
0: गाय।
1: जाता है।
0: हाँ,
1: तो दवाइयाँ आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या
0: गांव के
1: दवाइयाँ?
0: लोग करता है, गांव के लोग कोई तो आपका विक्स हो
1: हाँ
0: बोन में ना, विक्स डाल देता है, कोई जेल है, अलग अलग चीज़
1: हाँ
0: वो चाइनीज विक्स भी वो लोग ऐसा हम देखा ऐसे
1: हाँ
0: करके हमें डाल के वो बंद कर देता है, तो इंसेक्ट तो
1: हाँ
0: मर जाता है उस। हाँ,
1: ओ
0: दूसरा बेसी वो वाला दवा तो नहीं लिया, क्योंकि वो तो फल तो खाने पड़ेगा, तो
1: हाँ
0: इसलिए हम लोग उसको बहुत ध्यान देता है।
1: हाँ हाँ अपना तरीका है ना
0: अपना
1: वो।
0: तरीका से गांव का लोग ऐसे करता है, वो एक एक को बासता भी मारने के लिए।
1: हाँ, सब पौधों में तो एक जैसा कीड़ा तो नहीं होगा
0: नहीं
1: ना?
0: होगा, बेसी भाग आपका इसमें होता है, आपका ये ऑरेंज में और लेमन में भी होता है,
1: हाँ हाँ
0: और आपका अगर तो होता है, अगर में तो स्प्रे करना पड़ता है, अगर में भी स्प्रे करता है, इंसेक्टिसाइड देने पड़ता है। और ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं देता, क्योंकि हम लोग का सॉइल बहुत अच्छा है हिल्स का, वो आपका टॉप सॉइल में, टॉप सॉइल तो हम लोग का प्राय बहुत
1: हाँ हाँ
0: अच्छा है
1: हाँ
0: अभी
1: हाँ
0: तक। हम लोग ऐसा एक्स्ट्रा मैनियर भी नहीं दिया, ऐसा कुछ हम लोग देने नहीं पड़ता, उससे हो जाता है। खाली
1: ठीक
0: उसको वीडिंग टाइम टू टाइम करना है,
1: हाँ हाँ
0: साफ सुथरा रखना है,
1: हाँ हाँ
0: तो नेचुरली आ जाता है।
1: हाँ
0: एटलीस्ट थ्री टू
1: हाँ
0: फोर टाइम्स हम लोग ईयरली सफ़ा करना पड़ता
1: ईयरली सफा करना पड़ता
0: है।
1: है ना?
0: एक्सपेंडिचर तो बहुत होता है,
1: हाँ हाँ
0: एक्सपेंडिचर
1: बहुत
0: बहुत
1: सारा पौधा लगाया है तो
0: होगा
1: एक्सपेंडिचर भी तो होगा
0: होगा।
1: आपका।
0: हाँ,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: फ्यूचर
1: हाँ
0: के लिए होप करता है, कुछ
1: जी
0: रिटर्न देगा
1: बिल्कुल। हाँ हाँ
0: अगर हम रहे ना रहे,
1: हाँ हाँ
0: हमारा नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन के
1: जेनरेशंस।
0: लिए।
1: हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तक आपने कुछ प्रॉब्लम फेस किया है या फिर कुछ?
0: प्रॉब्लम तो ऐसा तो नहीं है, मैंने प्रॉब्लम यही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है,
1: हाँ हाँ
0: बहुत मेहनत करता है। और दूसरा तो हम लोग कुछ ऐसा हेल्प वगैरह तो नहीं मिला अभी तक, हम अपना से करता, सरकार के तरफ से तो मोरलेस हम अप्रोच भी नहीं किया, अगर होता तो अच्छा था, हम लोग और भी करते, खाली हमारा नहीं, हम तो कर सकता है। और ऐसे गाँव वाला बहुत है,
1: हाँ
0: उन लोग भी करने करने चाहता है और करता भी है, शायद उन लोग को भी सरकार अच्छा से ध्यान देने से उन लोग पर, तो उन लोग का जो इनकम सोर्स तो बढ़ने से अपना डिस्ट्रिक्ट भी तो वो है, इकोनॉमिक
1: वही वही हाँ हाँ
0: इकोनॉमिक
1: हाँ
0: ग्रोथ होगा, वही हम लोग ध्यान देना है। क्योंकि बहुत से फार्मर है ना, उन लोग बेचारे लोग कहाँ जाएगा, कहाँ ऑफिस में जाएगा, किससे मांगेगा,
1: हाँ
0: कुछ पता नहीं होता है,
1: तरीका पता नहीं
0: नहीं
1: है उन
0: होता,
1: लोगों
0: तो
1: को।
0: उन लोग को एक्चुअली हम लोग के लीडर लोग भी थोड़ा ख्याल करने पड़ेगा, ऐसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए तो हम लोग ग्राउंड लेवल में काम करना पड़ेगा, एकदम ग्राउंड में उनको ध्यान रखना है, कौन सा गांव में कौन क्या कर रहा है उसको देख के, है ना, ऐसा करने से सही हम लोग का इकोनॉमिकली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो गांव वाला का पास हाथ में पैसा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का डिस्ट्रिक्ट तो ये होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, वही है, तो इसके लिए हम लोग करने पड़ेगा। इस समय हम कॉफ़ी को भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ
1: कॉफी।
0: कॉफ़ी लगा के,
1: हाँ
0: क्योंकि हम
1: हाँ
0: देखा कॉफ़ी का मार्केट बहुत अच्छा है, तो लोग में वो इंटरेस्ट लेने से अच्छा होगा, कॉफ़ी बहुत कॉस्टली है, कि उसमें भी कुछ जाने से अच्छा है, इतना तकलीफ तो नहीं उसको लगाने को, कि हम उसमें भी कुछ 100 50 100 हम ट्राई कर रहे हैं इस बार।
1: हमारे दिमाहासाओ में तो तामुल का जो खेती करते हैं ये मतलब बहुत ही कॉमन है, और आपने भी तामुल लगाया है तो आपको लगता है कि तामुल का स्कोप अच्छा है?
0: हाँ, ख़राब नहीं है, अगर वो फ्रूट्स अच्छे से देगा तो ख़राब नहीं है, क्योंकि वो तामुल सिर्फ खाता नहीं, उसको कच्चा में पेड़ में वो खरीद लेता है, उससे
1: अच्छा
0: कुछ मैंने सुना कुछ ये आपका कुछ पेंट वगैरह ना कुछ बनता है उससे, तो उससे
1: मतलब उसका
0: खाता
1: जो
0: है।
1: छिलका होता है उससे।
0: हाँ, तो उससे खाता नहीं है, और क्या घुटका वगैरह वो बनाता है, वो बाहर, ये तो सब बाहर चला जाता है,
1: मतलब यहाँ पे जितना बिक्री होता है
0: जाता
1: उससे ज्यादा बाहर जाता है।
0: है, गाछ गाछ से खरीद लेता है, बागान पूरा खरीद लेता है, तो हमारा ध्यान में नुकसान तो नहीं होगा अगर उसमें बीमार ना हो।
1: तो सबसे ज्यादा बीमारी किस तरह का बीमारी होता है ये तामुल का पेड़ में?
0: वो तो एक तो येलोस टाइप हो जाता है एक टाइम में, येलोस होके एकदम पूरा पत्ता से ऊपर से येलो होके नीचे रूट तक
1: अच्छा मतलब वो पूरा पेड़ ही बर्बाद हो
0: बना
1: जाता है।
0: रहता
1: हमने सुना है कि जब तामुल का जो फूल देता है ना उसमें उसका फल नहीं होता है।
0: फूल देता है, फल नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं, कोई कोई आप देखिए तामुल अभी फल है, फल देते देते उसके साथ में फिर फूल भी देता है, वो होता है, तो वो उसी समय में आप तोड़ने से क्या नरम होता फूल,
1: ओ नरम हो
0: तब
1: जाता
0: वो
1: है।

0: इसलिए
1: अच्छा,
0: अच्छा तमुल नहीं मिलता।
1: ओ तो इसका मतलब है अगर जब वो फल दे रहा है, फल ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर उस समय फूल दिया तो क्या करना चाहिए?
0: तो एग्रीकल्चर वालों को मालूम होगा, हमको भी इतना पता था नहीं। मैं भी अभी शुरुआत किया है,
1: अच्छा,
0: शुरुआत किया
1: और
0: है,
1: फल देना शुरू नहीं हुआ
0: नहीं हुआ।
1: तो अभी तक आपने जितना ज्यादा इतना ज्यादा पेड़ लगाया है, पौधे लगाए हैं, तो आपने आपके हिसाब से जब आप मॉनिटर करते हैं कि उनका जो ग्रोथ है, किसका सबसे अच्छा ग्रोथ होता है, बड़ा जो पेड़ है, जैसे कि आपने चंदन लगाया।
0: चंदन तो चंदन स्लो होता है, व्हाइट चंदन जो लगाए थोड़ा स्लो है, पहला कुछ साल स्लो होगा, उसका बाद में है क्या, क्योंकि ये हम लोग का सॉइल टू एक्चुअली यहाँ तो हम लोग अभी लगा रहे हैं ना, ये तो साउथ में हम देखा, साउथ में बड़ा बड़ा चंदन का गार्डन है, वहाँ गया जब विजिट किया था हम लोग देखा, वहाँ तो पूरा एक डिविजन होता है हम लोग का, वो बड़ा सरकार का अंडर में होता है, तो इसका स्लो होता है ग्रोथ, लेकिन उसमें बेनिफिट है, बहुत रिटर्न अच्छा मिलेगा, आगर से भी रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो एकदम रूट से लेके वो खरीदता है।
1: मतलब कितना साल लग जाता है, मतलब
0: ये
1: एक
0: तो
1: पूरे पेड़ को मैच्योर होने में?
0: मेचर तो बहुत समय लगेगा,
1: बहुत
0: लेकिन हम लोग
1: समय।
0: एटलीस्ट 20-25 ईयर्स में तो हम लोग मिल जाएगा,
1: अच्छा।
0: उससे छोटा में भी खरीद के ले जाता है, अब बेचने चाहता ना वो 10-15 साल में भी हम लोग ले लेगा, लेने वाला
1: तो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो आपने लगाया है जो जल्दी प्रोडक्शन देना शुरू करता है?
0: वो तो तामुली है,
1: तामुली
0: तामुली,
1: है।
0: और नेक्स्ट में आएगा ऑरेंज आएगा, और
1: हाँ
0: लेमन, लेमन लेमन
1: हाँ
0: आएगा, लेमन अच्छा होता है हम लोग का जगह,
1: अच्छा।
0: असम लेमन जो बोलता है ना वो अच्छा होता है, अभी भी पूरा फल हुआ है।
1: तो यहाँ पे हम देखते हैं कि असम का जो लेमन है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में इसको लगाते हैं, मार्केट में भी आता है। तो ये जो राउंड लेमन जो आते हैं, जो बाहर प्लेन्स में जो हम लोग ज़्यादा देखते हैं, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे क्यों नहीं होता है?
0: ये तो बोल नहीं सकता, ये तो हमको इतना बोलने नहीं सकता, हम लोग उसमें नहीं गया,
1: ओ
0: हम उसमें नहीं गया कभी, हम लोग असम लेमन तो बेसी ये आता ना, बेसी पसंद करता है लोग, तो उसमें गया, और हम लोग का मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, और राउंड लेमन लेमन भी होगा, नहीं होने का बात नहीं,
1: अच्छा, मतलब लगाया नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है, कोई कोई लगाया भी शायद, लेकिन
1: ओ
0: मैं तो नहीं लगाया अभी तक।
1: ओ तो श्रोताओं, इस बातचीत को देते हैं एक छोटा सा विराम, और चलिए आपको सुनवाते हैं एक स्थानीय लोकगीत।

0: इस लोकगीत के बाद श्रोताओं जारी रखते हैं आज के विषय को। और अब आपने बनाना के बारे में बताया कि ये बनाना जो है ये भी मतलब जल्दी ही फल देना शुरू कर देता है। तो आपने लगाना ये रिसेंटली शुरू किया है या
1: नहीं, वो
0: पहले से
1: बना
0: है?
1: लोकल बनाना था, पहले से लगाया, वो फ्रूट भी मिल रहे हैं।
0: इसका मार्केट में मतलब बेचने में अच्छा प्रॉफिट मिलता है?
1: हाँ, अच्छा प्रॉफिट होता है। फिलहाल तो हम खाने के लिए हो जाता, हम लोग खा लेता है।
0: लगभग कितना पेड़ लगाया?
1: काफी है, 100 पेड़ तो होगा,
0: बहुत
1: काफी
0: ज़्यादा
1: है,
0: है। हाँ
1: काफी है पेड़।
0: हाँ
1: इसके साथ साथ मैंने G9 जो बोला वो लगाया, वो अभी तक फल नहीं दिया, उसको हम देख रहे हैं
0: मतलब
1: जो
0: ये
1: पेड़
0: नया
1: नया है।
0: किस्म है ये आप पौधा, मतलब ये सारे अपनी प्लांटेशन में आप जितने भी पौधे लगाए हैं आपने, ये आपको कहाँ से मिले, मतलब कहाँ से आपने
1: वो
0: इसको
1: कुछ कुछ तो
0: ऑर्डर
1: बाहर
0: किया?
1: से लेकर आए, जैसे बनाना वगैरह तो हमारे यहाँ होते हैं।

0: ये तो यहाँ से करा, और कुछ बाहर से लेके आता है,
1: अच्छा।
0: जैसे लाइक चंदन, ये ना तो हम बाहर से लेने पड़ेगा।
1: अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसे ही मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम शुरू करना चाहता है तो ये जो प्लांट्स आप लेकर आते हैं क्या ये इजीली हमारे यहाँ भी अवेलेबल होता है?
0: हाँ, अवेलेबल होता है, मेरा खुद का नर्सरी है,
1: अच्छा।
0: जैसे यहाँ खुद का नर्सरी है, हम लोगों को
1: जी
0: बताता भी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: कोई खरीदता है। रिसेंटली भी हम बताए एक फार्मर को, पूछा कि क्या चंदन लगा रहे, तो हम बोला ऐसा करना वो करना है, तो हम लोग को बता देता है, जो जानकारी है हमको, हमारे पास, हम लोग को हेल्प करता है।
1: अच्छा, मतलब आपके यहाँ से वो लेकर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट में आपने क्या क्या लगाया था?
0: हाँ, ऑरेंज है लगाया, मौसम्बी भी लगाया,
1: हाँ हाँ
0: वहाँ ऑरेंज तो लगाया, मौसम्बी लगाया, लेमन लगाया,
1: हाँ हाँ सबसे जल्दी फल कौन देता है इसमें से?
0: लेमन लेमन दे रहा है,
1: लेमन
0: लेमन तो अभी फल मिल रहा
1: फल मिल रहा है ना, वो शोर वाला। पानी ज्यादा है उसका, यहाँ माटी में बहुत अच्छा होता है डिमाहाजाओ में। और आपने मेंशन भी किया था वो मैंगो के बारे में, तो मैंगो में कौन सा किस्म लगाया आपने, कौन सा टाइप का लगाया?
0: वो मियाँ जैकी बोलने वाला, जो जापानीज मैंगो निकले वो कॉस्टली है बोला, तो उसको सोच के हमने लगाया, तो फिर दिखता है वो क्या रिटर्न देता हमको,
1: हाँ।
0: कैसा होता है।
1: और क्या क्या लगाया?
0: मैंगो में और भी दूसरा मैंगो भी लगाया एक दो, नाम भी इतना पता नहीं है, लेकिन हम लगाया,
1: हाँ।
0: देख रहा है उसको कैसा आएगा।
1: तो ये जो ऑरेंज आपने जो लगाया है ये हमारा लोकल ऑरेंज ही है,
0: हाँ, लोकल ऑरेंज है,
1: जो क्या बोलते हैं इसको, खासी मैंडरिन जो
0: हाँ,
1: बोलते
0: मैंडरिन
1: हैं।
0: नेखा सिंह लगाया, और वो ग्राफ्टेड वाला भी लगाया बाहर का भी, वो नागपुर वाला भी लगाया, कुछ
1: अच्छा,
0: देख रहा है ना,
1: मतलब अभी रिसेंटली ही लगाया है।
0: हाँ देख रहा है कौन सा क्या क्या होता है, फल कैसा आएगा।
1: तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे ये जो खासी मैंडरिन जो बोलते हैं इसका प्रोडक्शन पिछले सालों के हिसाब से तो इसका प्रोडक्शन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
0: हाँ एक्चुअली आप देखिए, झटिंगा एरिया में पहले तो बहुत मेहनत था ना,
1: जी जी
0: और स्लोली स्लोली वो खत्म होने लग गया। ये तो इतना बोने साल इन, फिर भी हमारे ख्याल में वो आफ्टर 50 इयर्स साइट वो रेस्ट ले रहा है साइट, वो जो सॉइल जो है, मतलब मिट्टी है, वो साइट उसको खाना दे नहीं सक रहा, नहीं किया ना, कुछ कुछ तो है इसमें ऐसे। उस अभी कुछ साल के बाद स्टॉप होने के बाद है, फिर अभी कुछ साल के बाद अभी स्टार्ट हो रहा है, फिर
1: मतलब फिर से फल देना शुरू कर रहा
0: फिर
1: है।
0: से पेड़ लगा रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है,
1: अच्छा।
0: लेकिन वो आपका अपर साइड में, बोराइल का अपर साइड में, लोअर साइड में नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नहीं हो रहा है,
1: अच्छा।
0: हुआ भी है मर रहा है, हम देखा खुद भी, तो साइट वो होगा या कोई डिजीज है उसका, बीमार हो उसको, तो हम लोग इतना बोल नहीं सकता, वो तो एग्रीकल्चर वाला लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे पता चलेगा।
1: तो इसके लिए मतलब ये लोग आके देखते हैं कभी, मतलब चेक करते हैं? आइडिया नहीं है ना। और मौसम भी के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मौसम भी हमारे दिमाग में कैसा हो रहा है?
0: होने होने चाहिए, क्योंकि मैं जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था तो मैंने माहूर एरिया में लगाया था, एक मेडिसिनल प्लांटेशन में, वहाँ देखा कुछ पेड़ लगाया, 8-10 पेड़, बहुत अच्छा हुआ,
1: अच्छा।
0: अच्छा हुआ, तो साइज तो छोटा हुआ,
1: ओ, मतलब साइज बड़ा नहीं हुआ।
0: बड़ा नहीं हुआ, छोटा हुआ, तो उसको देख के ध्यान में रखे, अब नहीं होगा हमारा यहाँ, वहाँ हुआ तो वहाँ, इसीलिए मैंने कुछ ट्राई किया, देखता उसको कितना अच्छा आएगा, तो हम मैंने लगाया, क्योंकि जब हम लगाया हमारे यहाँ अच्छा होगा तो लोग दिखेगा, हाँ इसमें जाना है ना, एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट के जैसे है ना, कौन सा चीज़ अच्छा होगा कौन सा नहीं होगा, इसका वही वही मकसद में हम ध्यान में रख के कर रहे हैं।
1: मतलब अभी आप थोड़ा बहुत टेस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं कि
0: हाँ
1: क्या अच्छा हो रहा है ताकि फ्यूचर में इसका प्रोडक्शन आप बढ़ा सके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई मान लीजिए ये करना चाहता है तो उनके लिए भी मतलब एक नया चीज़ लगाने का मौका मिल रहा है कि मौसम्बी का मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये ऑरेंज के साथ इन लोग का क्या हार्वेस्ट सेम सेम टाइम पे होता है?
0: सेम ही कर रहे हैं, एक ही साथ दिया,
1: एक ही साथ
0: एक
1: दिया
0: साथ
1: ना।
0: दिया मैंने,
1: तो लगभग एक ऑरेंज का पेड़ हो या फिर मौसम्बी हो ये कब तक फल देना शुरू कर देता है?
0: ये तो 6-7 इयर्स, 7 इयर्स तक लगेगा, 19 में लगाया था, अभी लास्ट ईयर में एक दो फ्रूट दिया था, और इसका इस साल होप करता है जो आएगा।
1: मतलब इतना वेट करने का जरूरत भी नहीं है, मतलब जल्दी मैच्योर हो ही जाता है। आपने कोकोनट भी लगाया है, इसके बारे में आप बताइए कितने लगाए हैं और इसका फल कब तक मिलता है?
0: फिलहाल तो मैं 10 लगाया, तो 10 का 10 है।

0: तक जिंदा है। इस बार रिसेंटली मैंने साफ उफ किया उसको, उसको उस कंपोस्ट वगैरह मैनर कुछ दिया, इंसेक्टिसाइड कुछ धाना दे दिया, देने के बाद में देख रहा है वो, मैंने वो ये आपका बाहर का ये,
1: हाँ,
0: ये लोकली वाला नहीं है, तो देख रहा है उसको कैसा होगा, लेकिन होप करता 2-3 साल में हमको उसका फ्रूट तो मिलना है, अनदर 3 इयर्स में।
1: तो कोकोनट का किस्म होता है क्या?
0: बहुत किस्म का होता है, हाइब्रिड भी होता है, हाइब्रिड तो नहीं लगाया फिलहाल, हाइब्रिड वाला सर जल्दी देगा, बोलता
1: हाँ हाँ
0: 3-4 साल में दे देता।
1: जी, तो हमने तो देखा है कि कोकोनट का तो पौधा बहुत बड़ा होता है ना, उसका छोटा वाला भी होता है क्या?
0: छोटा पौधा भी होता, 1 साल का, 2 साल का, ऐसा 3 साल, जितना बड़ा होगा ना, कोस्टली भी होता खरीदने में। मैंने लगाया तो वो तो कम से कम कितना, वो 30-40 kg का पैक में ना, दो आदमी को उठाने पड़ता है, बड़ा बड़ा लगाया।
1: छोटा पौधा में भी फल देता है?
0: नहीं छोटा में देगा, मतलब वो 3-4 साल लगेगा,
1: हाँ
0: छोटा
1: हाँ
0: तो जो आपका जो नारियल का लेके लोग जो जर्मिनेशन कराते ना,
1: ओ ओ
0: वो
1: अच्छा
0: से
1: जी जी
0: वो
1: जी सैपलिंग्स,
0: सैपलिंग्स,
1: हाँ
0: यस,
1: हाँ हाँ
0: वो बड़ा वाला आंध्रा तरफ से आता, आंध्रा स्पेसिस है, वहाँ से बेसी भाग आता है आसाम में, बाहर
1: ओके,
0: से आते हैं ना
1: हाँ
0: बेसी।
1: हाँ हाँ आपका ज़्यादातर जो सैपलिंग्स होता है वो बाहर से ही आता है ना जी? कहाँ से ज़्यादा आता है आपका सैपलिंग्स?
0: ये तो वेस्ट बंगाल से भी आता है, आपको कोई आंध्रा से आता है, हम लोग लोग आए, लोग देता हम लोग पास।
1: पौधा का बात तो हो गया, तो आप नाजरी भी चलाते हैं, तो नाजरी में क्या क्या चलाते हैं, क्या क्या है
0: बहुत
1: वहाँ
0: कुछ है,
1: पे?
0: फ्रूट स्पेसिस है उसको लेके, फ्लावर्स है आपका, चंदन वगैरह सब मिलता है आपका, दालचीनी का भी मिलेगा, तेजपत्ता मिलेगा, हर एक का पौधा मिलेगा, अगर नीम का चाहिए नीम के मिलेगा, क्या बोला पेपर का उसका भी मिलेगा, लीची है, मैंगो वैरायटीज, मैंगो है।
1: आपको तो फूलों का पौधों का बहुत शौक है।
0: टच है मेरा साथ,
1: हाँ, आपकी बातों से तो यही लगता है कि आप एनवायरनमेंट से ही प्यार करते हैं।
0: सही है, क्योंकि हम होल वीक हम रेस्ट नहीं लेते,
1: हाँ
0: मतलब संडे
1: हाँ
0: को रेस्ट है,
1: जी,
0: होल वीक अपना लगा रहता, अपना काम, कोई ना
1: हाँ
0: कोई
1: हाँ
0: काम में
1: हाँ
0: लगा रहता है।
1: हाँ हाँ सबसे ज्यादा बिकता क्या है आपका नर्सरी से?
0: अभी फिलहाल तो तामूल वगैरह लेता लोग, तामूल, चंदन, ऑरेंज,
1: ऑरेंज।
0: कि उसको लास्ट में उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लोग को रिटर्न अच्छा आएगा, वही एक सेविंग है हम लोग का,
1: हाँ
0: वही सेविंग है ना, जैसे हम लोग बैंक में सेविंग करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल।
0: भी एक।
1: क्या आप सैपलिंग भी खुद बनाते हैं क्या?
0: हाँ कुछ कुछ बनाता है, क्योंकि वो कुछ तो भाषा लेने पड़ता है, आसपास में अवेलेबल नहीं है।
1: हेलो, तो आपने बताया कि आप आपकी नर्सरी में फ्लावर भी रखते हैं, तो अलग अलग किस्म के फ्लावर्स होंगे फिर, कौन सा सबसे ज्यादा सेल होता है फूलों में?
0: अभी फिलहाल अब सीजन में होता है, सीजन में सीजन फ्लावर्स का होता है ना,
1: हाँ हाँ
0: सीजन फ्लावर बहुत है, पिटूनिया है ना, हाँ बहुत है, जेरेनियम है, अभी फिलहाल जेरेनियम, और फिलहाल तो अभी ये हाइड्रेंजिया, फॉरगेटमेंट बोलता है, इसका समय है, सीजन ऑफ फ्लावरिंग दे रहा है, क्या है वही है। और आपका इंडोर प्लांट्स वगैरह, जेड प्लान है, जीजी है, और एग्लोनोमा, एग्लोनोमा, एग्लोनोमा में बहुत किस्म का है,
1: हाँ हाँ
0: बहुत कलर का है,
1: हाँ हाँ बहुत सुंदर लगता है, अलग अलग रंगों में आता है।
0: ऐसा है काफी है। और आपका लकी वुड है, लकी वुड बहुत अच्छा होता है, स्नेक प्लांट्स, सिली है, बहुत है काफी है, लेकिन मेंटेन करना बहुत तकलीफ होता है।
1: हाँ, मैं वही सवाल पूछने वाली थी आपसे कि आप अपने नर्सरी को किस तरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के पौधे रखे हैं और फूल भी रखे हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं?
0: वर्कर है, उन लोग को डायरेक्शन देना पड़ता है, लेकिन खुद को ख्याल करना पड़ता है, अगर उन लोगों पर छोड़ देता तो नहीं होगा, एक साइड में वो पुली में पानी नहीं मिला वो सूख गया, क्या नहीं, खुद तो मालिक हमेशा उसको ध्यान में रखना है, सुबह शाम उसको खुद भी अपना भी प्रिपरेशन खुद भी करता,
1: हाँ हाँ
0: साथ साथ अपने से काम करता है।
1: जी, जैसे आपने बताया कि आप सैपलिंग भी खुद तैयार करते हैं, तो इसमें भी फिर आपको अलग से काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ बांटी हैं, हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई मल्टी प्लांटेशन करना चाहे तो आपसे वो टिप्स ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आपके पास तो पौधे अवेलेबल हैं हर प्लांट्स के, जो भी अलग अलग किस्म के, तो वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। तो सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे इतनी सारी जानकारी लेकर। हम आशा करते हैं कि आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं और अच्छी तरह से ये पले बढ़े और इससे आपको अच्छा मुनाफा मिले, हमारी यही आशा है आपके लिए।
0: थैंक यू।
1: इसी के साथ आज के इस विषय को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे। जाने से पहले श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं।

0: और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही हमारे कार्यक्रम को सुन भी सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं मेलेडी
0: और मैं जुदित
1: आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया था जुदित एल रामजाल ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे टीचर्स प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत करेंगी अंकिता पॉल। और ये टीचर्स प्रोग्राम रिपीटेड ब्रॉडकास्ट है।

0: आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। और आज का हमारा विषय है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रूरल एरियाज। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूरल एरियाज में एजुकेशन की प्रेजेंट सिचुएशन, वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक्सपीरियंसेस और उन पहलुओं के बारे में जो हमें इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस किमनुन थियंग हिंगना, जो थिंगवम हाई स्कूल माईबंग ब्लॉक के असिस्टेंट टीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो जैसे हमारे कार्यक्रम का विषय हमने बता दिया है मैम, उससे जुड़ के मैं पहली चीज़ तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स को एजुकेशन के दौरान कौन कौन सी कॉमन चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है।
1: रूरल एरियाज में बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उनमें से हम सब बताएंगे तो बहुत सारा समय लगेंगे।
0: जी,
1: सो आई विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फ्यू पॉइंट्स। उसमें से एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि इन रूरल एरियाज एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारा विलेजेस होते हैं। तो उन सारे विलेजेस में से एक विलेज में एक हाई स्कूल होता है, तो वहाँ पे इन मेनी अदर विलेजेस द स्टूडेंट्स कम टूगेदर टू दैट पर्टिकुलर विलेज टू गेट एजुकेशन। तो उनमें से एक एग्जाम्पल, मैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे इन थिंगवम हाई स्कूल दिगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरता है
0: जी।
1: एंड देयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस एंड दे हैव टू कम बाय वॉकिंग बिकॉज देयर आर नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड वी कैन टॉक अबाउट द रोड्स ऑल्सो, देयर आर नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ विलेजेस ऐसा भी है कि दे आर लाइकली विद इन 10 to 20 kilometers, सो चिल्ड्रन हैव टू ट्रेवल बाई फूट अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच स्कूल ऑन टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। एंड अनदर प्रॉब्लम इज द चैलेंजेस विच द स्टूडेंट्स फेस इज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स ऑफ द फैमिली, बिकॉज मोस्टली इन रूरल एरियाज पीपल देयर दे मेनली डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो वहाँ पे व्हेन दे मेनली डिपेंड ऑन फार्मिंग देयर पेरेंट्स मेन फोकस इज ऑन द फार्मिंग एंड मोस्ट पेरेंट्स वी हैव टू मेक देयर माइंड डेवलप्ड दैट एजुकेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी का वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप्स का वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होता है कि घर पे उन लोग का भाई बहनों को देखभाल करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट अटेंड स्कूल प्रॉपरली एंड देन फिर दे हैव टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन द फील्ड्स एंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फॉर सपोर्ट करने के लिए, इट कैन बी बेटर सपोर्टेड बाय कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स जो एजुकेटर्स होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स लोग के साथ हम लोग मिलते हैं एंड देन फिर हम लोग उन लोगों को समझाते हैं। एंड इट कैन बी बेटर सपोर्टेड थ्रू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा। एंड देट इज़ वट आई थिंक इज द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाई स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज।
0: जी जी मैम, ये आपने बहुत अच्छे से जो चैलेंजेस फेस करते हैं इसको पॉइंट आउट किया है और इसको सपोर्ट करने का रास्ता भी आपने बताया है। तो मैं आपसे दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि स्कूल्स में जो बेसिक स्कूल फैसिलिटीज़ है बच्चों की लर्निंग को कैसे इफ़ेक्ट करती है।
1: स्कूल के जो बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं वो चिल्ड्रन के लर्निंग को बहुत मदद करते हैं। एजुकेशन इन द सेंस इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग द बुक्स, लेकिन वन टॉपिक विल बी सेफ्टी एंड हाइजीन, जो कि ये सेफ्टी एंड हाइजीन का वजह से बच्चे के माइंड्स भी ओपन हो सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू सी दैट इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ वेरी डर्टी एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स आर नॉट क्लीन, इट इज स्वैम्प बाय डर्ट, तो बच्चे लोगों का भी अटेंशन नहीं हो पाएगा, दे विल नॉट पे अटेंशन ऑन द क्लास। सो आई फील दैट सेफ बिल्डिंग, सिक्योर फेंसिंग, क्लीन टॉयलेट्स हो एंड वो सब चीज़ उन लोग का फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग और उन लोग का अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन क्योंकि स्टूडेंट्स छोटे बच्चे हैं, उन लोग का माइंड्स फुल ऑफ बहुत सारी चीज़ें होते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली. सो अगर ये एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं होते हैं तो उन लोग का बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है. देन ओवर क्राउडिंग, वो सब का वजह से उन लोग का जो पढ़ाई है वो भी हिंडर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई फील दैट सेफ्टी एंड हाइजीन, द एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन, दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
0: बिल्कुल मैम, ये बहुत सच बात कही है आपने. तो मैम, जैसे अभी हमें पता है कि आप एक रूरल एरिया में आप टीचिंग करती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूरल स्कूल्स में पढ़ाते वक्त टीचर्स को कैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो इस जर्नी से क्या सीखते हैं?
1: द टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज विल बेटर अंडरस्टैंड मी इन दिस
0: जी,
1: बिकॉज इनमें से बहुत सारा चीजें हैं. एक चीज मैं बताना चाहती हूँ
0: जी, जी.
1: कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इन रूरल एरियाज एवरीवन नोस एवरीवन. सो टीचर्स ऑल्सो विजिट देयर होम्स, दे विजिट देयर स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड ऑल. तो उसमें एक डीप कम्युनिटी कनेक्शंस होता है. एंड अनदर वन इज रिसोर्सफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज इन रूरल एरियाज वी डू नॉट गेट एवरीथिंग, ऑल द फैसिलिटीज विच वी गेट इन टाउन्स. Especially the village where I am staying, you will find one or two shops only. And there you will not find everything, whatever we get here. तो टीचर्स जो वहाँ पे काम करते हैं, हम लोग एडेप्ट करना पड़ता है क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस है, हमें कुछ नहीं मिलता. तो हम लोगों को अपना ओन मटेरियल्स हम लोग इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, जितना सामान या रिसोर्सेस मिलता है. एंड फिर अनदर वन इज द टीचर्स, दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस. रेजिलियंस हम लोग एडेप्ट करना पड़ता है कि हम लोग ओवरकम करना पड़ता है चैलेंजेस, पोर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. इन फ्यू रूरल एरियाज देयर आर प्लेसेस वेयर देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तो उसमें टेक्नोलॉजी होना मुश्किल है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो देयर विल बी नो बैटरीज एंड ऑल. तो टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए. तो वहाँ में टीचर्स लोग उसमें भी रेजिलिएंट होना पड़ता है कि यू नो दे ब्रिंग देयर ओन बैटरीज, या नहीं होने से बच्चे लोगों को टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाने के लिए जरिए नहीं होता है. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब टाउन में आते हैं, दे ब्रिंग ऑल द मटेरियल्स, इवन इफ दे कैन नॉट शो दोज वीडियोस एंड ऑल, दे प्रिंट आउट ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल, सो दैट द स्टूडेंट्स विल बेटर अंडरस्टैंड. तो वही है, हम लोगों को टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज एडेप्ट करना पड़ता है. लेकिन जितना भी हार्डशिप्स हो उनमें से हम लोगों को फुलफिलमेंट मिलता है, फुलफिलमेंट इन सर्विस. लाइक हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि we can see how the students are struggling, how they have to walk from one village to another village, like 10 to 20 kilometers they will walk, they will come to school. So we feel that the students, they really want to learn. You know, we do not get time to think that slack off karne ke liye time nahi hai, like we need to, the children, if they are doing this much, then we the educators, hum logo ko hamara full potential dena padega. And fear, another one is impactful mentorship. Jaha educators hum log learn karte hai, hamara role kaha tak hum log extend kar sakega. Sirf academics mein nahi, balki students ko aspire kare in all round development, hum log un logo ko sikhane ke liye. Kyunki you will find ki bacche in village and towns are different. So jitna hum log sakte hain, hum log all round development in all possible ways, hum log sirf books ke zariye nahi, jitna bhi in order to survive, wo sab bhi hum log un logo ko padhate hain.
0: Ji ma'am, bilkul bahut acha laga ye sunke ki aap log apne jo teaching ko apne ek noble profession ki tarah maan ke us pe itna man laga ke karte hain, bahut acha laga ye sunke. To ma'am, abhi main aapse ye janna chahungi ki jaise aapne hame pehle bhi bataya hai families ko jaake aap log inspire karte hain बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो इसमें फैमिलीज और कम्युनिटी किस तरह बच्चों को अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए एंकरेज कर सकते हैं?
1: दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आई बिलीव अदर टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज भी वो लोग समझेंगे. क्योंकि अभी नया सेशन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर ऑल्सो हम लोग टीचर्स लोग पैदल जाते हैं विलेजेस टू विलेजेस, वन विलेजेस टू अनदर. वेन एवर देर इज अ हॉलीडे, हम लोग उस दिन वी विल गो टू दैट वन पर्टिकुलर विलेज, घर घर हम लोग जाते हैं पेरेंट्स लोग के साथ बात करने के लिए कि यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बच्चे को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, वो सब हम लोग जाके एनकरेज करते हैं. देन वेन वी फाइंड अनदर डे, इफ इट इज़ अ हॉलीडे, देन वी गो टू अनदर विलेज जहाँ में हम लोग फिर बच्चे लोग को जाके समझाते हैं, not only the children but the parents also.
0: Mm-hmm.
1: तो यहाँ में हम लोग जितना जाके एनकरेज करते हैं और उन लोगों को समझाते हैं, वहाँ पे फैमिलीज एंड कम्युनिटीज भी दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन स्टूडेंट्स एजुकेशन इन रूरल एरियाज.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि फैमिलीज अपने माँ बाप बच्चे को अगर नहीं समझाएंगे कि स्कूल जाना है, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देन द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे विल नॉट पे इम्पॉर्टेंस. और फिर कम्युनिटीज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आई हैव फाउंड कि इन दैट एरिया जहाँ में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे द विलेज कम्युनिटी लीडर्स ऑल्सो, वो लोग क्या करते हैं कि व्हेन द एग्जाम इज नियर, मेनी पीपल वो लोग ड्यूटी भी करते हैं कि बच्चे लोगों को पढ़ाई करना है, और दे डोंट लेट द स्टूडेंट्स लॉयटर अराउंड. तो ये सब चीजें हैं जो फैमिलीज फिर कम्युनिटीज वो लोग बच्चे लोग को एनकरेज कर सकते हैं टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन.
0: जी मैम, तो आपने बहुत सही बात कही है कि फैमिलीज और कम्युनिटीज को भी एजुकेशन के बारे में एनकरेज होना जरूरी है हमारे बच्चों के लिए. तो आपसे मैं अभी ये जानना चाहूंगी कि आपने हमें पहले बताया है कि उस साइड पे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है, तो टेक्नोलॉजी हमारे जो रूरल एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है?
1: टेक्नोलॉजी श्योरली विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एवरीवेयर, स्पेशली इन रूरल एरियाज.
0: जी,
1: जिस जगह पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वहाँ पे बच्चे को यू नो स्मार्ट क्लासरूम्स, दे कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग बाई व्यूइंग, सीइंग, बाई लर्निंग. तो थ्रू वीडियोस भी बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी यू नो इन रूरल एरियाज इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहाँ पे इफ द टीचर डजंट स्पीक द सेम डायलेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, लैंग्वेज बैरियर आता है.
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बच्चे को एजुकेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसे है कि बच्चे नहीं समझ पाते, एंड देन इफ द टीचर इज यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज और द हिंदी लैंग्वेज बट डजंट नो द मदर टंग ऑफ दोज चिल्ड्रेन, देन दे कैन यूज दिस टेक्नोलॉजीज टू मेक देम अंडरस्टैंड बेटर.
0: जी मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लैंग्वेज बैरियर को भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मिटा सकता है. तो अभी धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूरल एरियाज में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सब मिलकर कौन से ऐसे प्रैक्टिकल और पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं?
1: इसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, फिर टीचर एम्पावरमेंट ताकि वो लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी मिल सके, और फिर यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. और फिर यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस होता है, एंड वो सब चीज़ हम लोग मिलके दूर कर सकते हैं मेरे ख्याल से. एंड देयर आर मेनी अदर जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज थ्रू गवर्नमेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है, जैसे कि मिड डे मील्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब हम लोग सब मिलते हैं. आई फील दैट दीस आर मोस्ट नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट एंगेज, एंड हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस थिंग्स.
0: जी मैम, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज बताई है जो इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है. लेकिन मैं आपसे एक और चीज हमारे श्रोताओं के लिए पूछना चाहूंगी कि आपके तरफ से आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में और रूरल एरियाज के बारे में, जहां तक आपका ये मैसेज पहुंच सके?
1: Just as B.B. King said, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. So education is important, and हम लोग अपने छोटे छोटे एक्स और अपने छोटे छोटे वर्ड्स के जरिए हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स या पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज को जहाँ पे भी हम हैं, वेदर इन रूरल एरियाज और इन टाउन एरियाज, वी कैन हेल्प ईच अदर इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड टीचर्स. थैंक यू.
0: जी मैम, बहुत अच्छा लगा. आपका आखिर का मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए बहुत असरदार रहेगा मैं सोचती हूँ, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया यहाँ पर स्टूडियो पे आके हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम.
1: थैंक यू सो मच.
0: श्रोताओं, तो आज की इस बातचीत से हमें रूरल एजुकेशन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका मिला. जब हम किसी भी स्थिति को समझते हैं, तभी हम उसमें बेहतर सोच और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. रूरल एरियाज में एजुकेशन का सफर अपने आप में एक अलग अनुभव है, जहां चैलेंजेस के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही मजबूत होती है. अगर हम सब मिलकर अवेयरनेस बढ़ाए, बच्चों को मोटिवेट करें और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए तो एक सुंदर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं अंकिता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

दोस्तों, आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत किया था अंकिता पॉल ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा

0: माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी और लॉन्ग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण

0: पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगी संयुक्ता दत्ता।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आकाशवाणी के हाफलंग केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो हाफलंग को लेकर इस हफ्ते हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त संजुक्ता। हर हफ्ते की तरह आज भी आपसे बातें करेंगे, आपके पसंदीदा गाने की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए देखते हैं आज का पहला कॉलर कौन है।
1: हेलो हाफलंग।
2: हेलो दीदी
1: जी, नमस्ते।
2: मैं गंगाधर सावनकर बात कर रहा हूँ, कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: जी गंगाधर जी।
2: हाँ दीदी, कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया दीदी
1: जी।
2: आपके आपलांग में कैसी है धूप?
1: आज तो धूप नहीं है।
2: अरे वाह, गर्मी से राहत मिल गया।
1: जी जी, बताइए गंगाधर जी, आज हमें फोन किया, आप कौन सा गाना हमसे सुनना चाहते हैं?
2: लोफर फिल्म का।
1: कौन सा गीत?
2: मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं ना कहीं।
1: जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये।
2: जी जी जी,
1: हम आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत गीत।
2: नाम लिखो दीदी।
1: जी जी, जरूर लीजिए।
2: हमारे गौतम जी राय बोले, तुकाराम जाधव, दिलीप पावजा, सुनील झा, नीरज रबारी और उदयलाल टेलर जी, राजेंद्र गंगवार, भगवान सिंह जी और संजय थोरा जी, विजय सुरलकर, ये सभी लोगों को डेलीकेट गाना है, आपको भी दीदी डेलीकेट।
1: जी जी, बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: दीदी। अंजलि
0: आप कौन बोल रही हैं?
1: बोल रहा हूँ, सोनीतपुर
0: अंजलि जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: असम।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: अच्छी हो मैम? आज तो बहुत गर्मी हो रहा है जी,
0: गर्मी है?
1: आज को
0: अच्छा,
1: बारिश हुआ था, अभी बारिश नहीं हो रहा है, अभी धूप दे रहा है।
0: गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं?
1: गर्मी से बचने के लिए ठंडा पानी पीते हैं और घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं
0: जी अच्छी बात है, ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
1: जी।
0: अंजलि जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मूवी नेम मिट्टे डन और गाने के बोल है कहे जो एक बार सजना जी। मेरे साथ है अस्मिता बसुमतारी, अन प्रेमिका तिवा, अस्मिता बसुमतारी, अनवार हुसैन और आइकन मुंडा, बिमल बसुमतारी एंड रमेश पत्रो, सुखेंद्र रोंगटी एंड ऑल द लिसनर।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सभी के लिए ये खूबसूरत गाना आपको सुनवा रहे हैं। हमें फ़ोन करने के लिए
1: थैंक
0: आपका
1: यू।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी। हम योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
0: जी बताइए, आज हाल चाल कैसा है आपका?
1: बढ़िया है, अच्छा है। सिलसिला
0: और गीत कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है ये, और आपको ये खूबसूरत गीत हम सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार।
1: मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से बोल रहा हूँ मैम, सुरेश कुमार सारथी जी।
0: सुरेश जी, बताइए आज का हालचाल क्या है?
1: बढ़िया है मैम, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी है,
0: जी, गर्मी का मौसम है, अभी तो सभी जगह पर गर्मी है।
1: बहुत गर्मी है मैम, घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती,
0: जी
1: जरूरी काम हो तभी घर से निकलना चाहिए, और घर से निकले तो मुंह और कान को अच्छी तरीके से ढक लेना चाहिए, और छाता अवश्य ले जाए, पानी की बोतल है, और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए,
0: जी जी इतनी गर्मी
1: और
0: में पानी की कमी शरीर में ना हो, इसी का ध्यान रखना जरूरी है।
1: तो ऐसे मौसम में खान पान पर भी थोड़ी सी ध्यान देना भी जरूरी है मैम, जैसे तेल है, मसाला युक्त है, भोजन नहीं करना चाहिए,
0: जी
1: और फल फ्रूट में खीरा, ककड़ी, कलिंदर, तरबूज, ये सब खाना चाहिए मैम,
0: जी जी जी आपने बिल्कुल
1: इससे
0: सही
1: क्या है,
0: बताया।
1: बारिश का मौसम आने वाला है, तो श्रोताओं से एक आग्रह करना चाहूंगी कि अधिक पेड़ लगाए मैम, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसे भीषण गर्मी और जल संकट की सामना करना ना पड़े।
0: जी, आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा सुंदर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोता इस बात को सुनेंगे, आशा करते हैं कि इसका पालन भी करेंगे। अभी जल्दी से हमें बता दीजिए कि आज की आपकी पसंद क्या है।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, हाय
0: जी
1: रे हाय, नींद नहीं आए, प्यार झुका जाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना, ये वाला गीत है मैम, अपने परिवार सारथी परिवार की ओर से इसको सुनना चाहते हैं,
0: जी जी
1: और मेरा लड़का है कमल खान सारथी, वीरेंद्र गिरीज खान सारथी, और पूरे सारथी परिवार की तरफ से प्ले कर दीजिए मैम इस सुंदर सी गीत को।
0: जी आप सभी के लिए ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और फोन करने
1: बहुत
0: के
1: बहुत
0: लिए
1: धन्यवाद मैम,
0: धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो मैडम, मैम नमस्कार।
0: नमस्कार। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मेरे नाम की स्टेशन सर्विस से बात करता हूँ। मेरा नाम मिस मनोती रखते हो।
0: जी
1: आप शहजाद फिल्म का गाना सुने हैं? गाय कलाकार है हल्का यानी एक दो तीन।
0: जी हम जरूर सुनवाएंगे आपको ये गीत।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो
0: नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: नमस्कार जी। जी
0: जी,
1: मैं सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से बात कर रहा हूँ जी।
0: जी बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं।
1: अच्छी बात है जी, आप ठीक हो और हम भी ठीक हो तो हमारी बात तभी हो पाएगी।
0: जी, बड़े दिनों बाद आपसे हमारी बातें हो रही है।
1: हाँ जी बिल्कुल जी,
0: जी, अभी पंजाब में गर्मी का मौसम कैसे चल रहा है?
1: गर्मी काफी है जी अभी। लेकिन ये
0: जी
1: पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है
0: जी
1: और कुछ टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम हुआ है
0: जी लेकिन बदलते मौसम में भी आप अपना ख्याल अवश्य रखें।
1: जी। बिल्कुल
0: जी, आज बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: गीत सुना दे हैं। फिल्म है जी सफर और इसका टाइटल सॉन्ग है जी किशोर कुमार की आवाज में, जिंदगी।
0: जी।

0: शुक्रिया, आपने इतना सुंदर गीत के लिए हमें फरमाइश किया। हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं ये गीत, और फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।

0: में
1: जी
0: मोहब्बतें गाना बजा देगा।
1: मोहब्बते का कौन सा गीत आपको सुनना है?
0: आपका पसंद क्या गाना बजा देगा?
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ड्यूटी में शिक्षक और में आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत शुक्रिया आपको। हम आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बते फिल्म का मेरी पसंद का एक गीत।

0: हेलो हफलोंग,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से धीरज व्यापारी बात कर रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता।
0: जी, बताइए धीरज जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं और आकाशवाणी आप लोग परिवार आप कभी अच्छे होगी।
0: जी, हम भी अच्छे हैं। बताइए, आज हमें फोन किया, कौन सा गीत आपकी फरमाइश में है आज?
1: गाना सुनना है, तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो, आप तो ऐसे नशे फिल्म का गाना है और गाया है हेमलता ने,
0: जी
1: और हम थोड़ी बात अगर इजाजत आपकी हो तो बात करेंगे।
0: जरूर कीजिए।
1: हम यही कहना चाहते कि हमारे घर में जो भी अगर खाना है तो हमारे खाने में से थोड़ा बचा के हम पशु पंखियों के लिए, जीव जंतु के लिए रखे और उनको उनको खाना पानी दिलाए, और उनके पानी की व्यवस्था तो सारे भारत के श्रोता वर्ग, रेडियो के श्रोता वर्ग और लोग भी करते हैं पानी की, दाना पानी की, तो उनको आपके जरिए से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस भीषण गर्मी में भारत के कई कोनों में जिस व्यक्तियों ने, जिस इंसानों ने

0: और जो ठंडी छाछ की जो व्यवस्था की है उनको भी आपके जरिए से धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
1: जी, हम भी सभी को आपकी तरफ से धन्यवाद देते हैं जो इस महान कार्य को करते हैं, और आपका जो ये विचार है बहुत ही अच्छा विचार है।
0: हमें ये सब सीखने को मिलता है आकाशवाणी के जरिए, आप जैसे अनाउंसर के जरिए हमें सीखने को मिलता है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और हमें फोन करने के लिए और अच्छे सुझाव देने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो प्रांग
0: नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सतारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ। हमारे
0: मैं ठीक हूँ। और आपके हालचाल?
1: आप सब ठीक है? कुशल मंगल है, भगवान की दुआ है, सब
0: जी
1: ठीक चल रहा है। हमारे इधर गर्मी बहुत है बहन जी।
0: जी आपके उस साइड में तो इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ही गर्मी होती है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा।
1: जी,
0: जी बताइए, आज आपकी फरमाइश क्या है हमारे लिए? कौन
1: फिल्म बनावा है राम तेरी गंगा मैली,
0: सा गीत?
1: सुन साहिबा सुन प्यारे की धुन। जी
0: जी बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: जी कुछ मित्रों के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी जरूर,
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र राजशेखर जी, कांताबाव रामगढ़ जी, किरण सिंह जी, छत्तीसगढ़ के जी, गौतम कोकाटे जी, विकास चेड़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल चारुकर जी, धनंजय अपचिटेले जी, रमेश जाधव जी, उदय काळे जी और अंबा सरोदे जी, रामचंद्र कोरडे जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
0: जी, आप सभी के लिए ये खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और फोन करने के लिए आपका बहुत

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो हाफलोन, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: जी बताइए।
1: जी बहुत अच्छे हैं और इस समय बादल छाए हैं और बारिश भी हो रही है, अभी ठंडी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है।
0: शिमला में तो ऐसे भी मौसम थोड़ा सी सर्दी सर्दी जैसी रहती है ना?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी भी होती है, जब मौसम खराब होता है तो फिर बारिश होती है तो सर्दी चलती रहती है इधर।
0: जी, आपके वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं ऐसी जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है?
1: टूरिस्ट को आकर्षित करती है शिमला का जो है शूटिंग रेंज, रिज मैदान है और कुल्लू मनाली है, हमारा क्षेत्र कोट खाई है, यहाँ जो है एप्पल का पेड़ होता है उसको भी देख सकते हैं, हरियाली देख सकते हैं, और
0: जी
1: चिड़ियाघर और कुफरी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ की जो बर्फ का नजारा भी आप ले सकते हैं सर्दियों में, अगर आपको पता नहीं कि एप्पल के पेड़ कैसे होते हैं वो भी देख सकते हैं।
0: जी क्योंकि शिमला के नाम आते ही हमारे आंखों के सामने बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है ना?
1: जी
0: ये वैसे
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: शिमला के बारे में हम सभी जानते हैं, पर हमारे कुछ ऐसे श्रोता भी हो सकते हैं कि जिन्होंने शिमला अभी देखा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी देने के लिए। और
1: जी
0: अब
1: जी
0: जल्दी से हमें बता दीजिए कि आज आपकी फरमाइश क्या है?
1: आज मुझे गाना सुनना है, तुम सा नहीं देखा, और गाने के बोले वो हमसे खपा है। जी
0: जी, खूबसूरत गीत
1: जी
0: आपने पसंद किया है, हम
1: जी जी जी
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। और फोन करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: जी

दोस्तों, इस फोन कॉल के साथ ही समेटते हैं इस हफ्ते का पहला एपिसोड। आज जिन श्रोताओं की फरमाइश हमने पूरी की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। जिन श्रोताओं का नाम आज शामिल नहीं हो पाया, उनकी फरमाइश लेकर हम कल फिर हाजिर रहेंगे ठीक रात 9 बजे। इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत किया था संयुक्ता दत्ता ने। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सभी आनंद लेंगे कुछ फिल्मी गीतों का, और चित्रगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के बेहतरीन आवाज़ में। आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का।

दोस्तों, चित्रगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आपने सुना फिल्म गोलमाल से किशोर कुमार के आवाज़ में, और इसी गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही हमारी ये आज की दूसरी सभा भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज रहे हैं। समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। कल की पहली सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।